गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर टिमिट्यून के लिए MGM 90.8 FM आरजे अज्ञात तुमच्या सोबत आहे आणि एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झालेली आहे आणि आज आहे शुक्र है, शुक्रवार है, फ्रायडे मॉर्निंग मध्ये तुमचं स्वागत आहे. और जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है वो दिन आ चुका है. म्हणजे कसे आपण फ्रायडेचा वेट ना तर सोमवार पासूनच करत असतो. असं म्हणू नका की आता फ्रायडेला आपण ऑफिस असतो, म्हणजे असं म्हणू नका, म्हणजे असं म्हणावं लागेल आज ऑफिस आहेच. पण कसं आहे ना, आज ऑफिसला जाताना दररोज सारखा टेन्शन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस वगैरे काही न, क्योंकि यार आज है फ्रायडे, उसके बाद सामने खड़ा होता है वीकेंड के दो दिन. इस वजह से एकदम स्ट्रेस लेवल कम होता है और एकदम हैप्पी हैप्पी और हैप्पी वाला मूड होता है. तो इसी मूड को और भी बहुत ही खुशनुमा करते हैं और हैप्पी बनाते हैं आने वाले सुपर से डुपर हिट गानों के साथ और इस मौसम के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी और ये फ्राइडे मॉर्निंग आपकी यादगार रहेगी. बाकी तो क्या है आपके कुछ प्लान, जरा बताइए मुझे DMKJ का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर. लौट कर आऊंगा कुछ देर में, तब तक के लिए एंजॉय करना आने वाले सुपर हिट गाने एंड स्टे ट्यून. गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। आज घर की सफाई करते वक्त एक पुराना सा वॉलेट मिला, ब्राउन कलर का, कोने से थोड़ा घिसा हुआ था। ऐसे वॉलेट जो आज के जमाने में शायद कोई यूज भी ना करता हो। मैंने उसे ओपन किया, अंदर कुछ पुराने बिल्स थे, कुछ रिसीप्ट और एक छोटी सी फोटो। फोटो मेरी थी जब मैं शायद 5 या 6 साल का था। मुझे हैरानी हुई, वॉलेट में पैसे कम थे, कार्ड्स पुराने थे, लेकिन मेरी फोटो अब भी संभाल कर क्यों रखी थी। तब याद आया, पापा जब भी घर से निकलते थे इसी वॉलेट को पॉकेट में रखते थे, ऑफिस, बाजार, सफर, हर जगह। मतलब सालों तक हर दिन मैं उनके साथ था, एक छोटी सी फोटो के रूप में। उस वॉलेट में एक और चीज थी, एक पुरानी रिसीव। उस पर लिखी डेट वही थी जब मेरी स्कूल की पहली फीस भरी गई थी। मुझे अचानक समझ आया, हम बचपन में सोचते थे कि पापा बस ऑफिस जाते हैं और घर आ जाते हैं, लेकिन उनके वॉलेट में जो भी कागजों ने बताया, उनकी पूरी जिंदगी हमारे सपनों की EMI भरते हुए गुजरी है। अपनी ख्वाहिशें साइड में रखकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हुए। और शायद इसीलिए पापा ज्यादा बोलते नहीं, वो अपना प्यार लफ्जों में नहीं जिम्मेदारियों में लिखते हैं। मैंने वॉलेट बंद किया और बहुत दिनों बाद पापा को फोन किया। बस इतना कहा, पापा आप कैसे हो? 2 सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। और पता नहीं क्यों उस दिन उनकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी सी लगी, शायद उम्र की वजह से, या शायद इसीलिए क्योंकि हम बड़े होते होते उनकी कुर्बानियां देखना भूल जाते हैं। कभी वक्त मिले तो पापा का पुराना वॉलेट जरूर देखना, हो सकता है उसमें पैसे कम मिले लेकिन मोहब्बत और कुर्बानी का हिसाब बहुत ज्यादा मिलेगा।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरजे अदनान, और हेल्थ टिप्स में कुछ बेहतरीन बातें जानते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, और आज बात करते हैं ऐसी आदत की जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, रात को देर से खाना खाना। काम का प्रेशर, वेब सीरीज का प्रेशर, ये भी एक होता है। और एक और एपिसोड देख लेते हैं यार, या दोस्तों के साथ लेट नाइट प्लान्स, और डिनर का टाइम पहुंच जाता है सीधे 11 या 12 बजे तक का। लेकिन हमारी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, रात में मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की स्पीड दिन के मुकाबले धीमी हो जाती है। ऐसे में बहुत लेट और हेवी डिनर करने से पेट को खाना डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका रिजल्ट पेट भारी लगना, एसिडिटी, गैस और कभी कभी नींद में भी दिक्कत होती है। और जब खाना खाकर तुरंत बेड पर लेट जाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपर्ट अक्सर सलाह देते हैं कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले डिनर कर लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, हेल्दी रहना ये सिर्फ क्या खाते इस पर नहीं बल्कि कब खाते इस पर भी डिपेंड करता है। और याद रखिए, रात का खाना जितना समय पर होगा नींद भी उतनी सुकून भरी होगी और डाइजेशन भी उतना ही बेहतर होगा। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और सेहत की छोटी छोटी बातें याद रखिए और जिंदगी में बड़ा फर्क लाइए। स्टे ट्यून्ड।
1: ज्याचं आपल्यावर प्रेमच नाही त्याच्यावर प्रेम करायचं दुखणं तुम्हाला नाही कळणार।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। तो मैम के साथ हम वर्क कल्चर और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर भी कॉमन हो गया है, क्या इससे स्ट्रेस कम हुआ है या बढ़ गया है?
1: देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है वो हम बोल सकते हैं इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, है ना। तो इसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। कंपनी डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको ये वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर हम कैसे सीप इन कर सकते हैं और उसे कंपनी को और एम्प्लॉय को कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो दिस वुड बी डिपेंडिंग ऑन द यू नो कंपनी टू कंपनी कि उनका वर्क कल्चर कैसे है। अब जैसे सैटरडेज को वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और संडे को छुट्टी हो सकती है, तो वो कंपनीज जो सैटरडे संडे ऑफ नहीं दे सकते, दे कैन कंसिडर कि सैटरडेज को एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, पर ये ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी हो सकता है अगर हमने इसे ठीक से मैनेज नहीं किया तो। तो अगर हम ठीक से मैनेज अगर कर सकते हैं देन एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर श्योर, बट वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर इज़ अ ब्लेसिंग इटसेल्फ।
0: तो वर्क फ्रॉम होम से, हाइब्रिड वर्क कल्चर से स्ट्रेस कम हो गया या बढ़ गया, इसके बारे में अभी हमने मैम से जाना। तो भाई लोग, आपकी भी और बहन लोग, आपके भी दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे तो आप हम तक पहुँचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश है सराको पर. यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम. आरजे अदनान आपके साथ है और इस वक्त हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं. तो आज की फरमाइश आई है प्रेम देशमुख की तरफ से इस गाने

क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। किशोर कुमार जी की आवाज में गाना है प्रेम पुजारी फिल्म से, जो कि 1970 में आई थी, 1970 की ये फिल्म है। और तब से लेकर आज तक यार किशोर दा के गाने ना पुराने महसूस होते ही नहीं है, जब भी सुनो ना तब फ्रेशनेस और वो एक अपनापन फील होता है। तो यही जादुई आवाज थी किशोर दा की। तो चलिए फिर फरमाइश पर उन्हीं का गाना एंजॉय करते हैं। और हाँ, अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचाओगे, नंबर नोट डाउन कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर फिर से दोहराता हूँ 9359320080। फरमाइश बताइए, मूड फ्रेश कीजिए और ये गाना एंजॉय कीजिए। कुछ ही देर में लौट कर आऊंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

तो बिना मांगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज मिली जाती है, वो है पानी की बोतल। जी हाँ, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, और आते ही ना सबसे पहले आपको पानी की बोतल थमा दी जाती है। भले आपको बोतल से पानी पीना हो या ना पीना हो, या आपको सादा पानी पीना हो, लेकिन वो फोर्सफुली ना हमें बोतल देते हैं। और कुछ कुछ होटल में तो एक ऐसा रूल है भाई, वहाँ पर हमें नॉर्मल फ्री वाला पानी मिलता ही नहीं है, डायरेक्टली हमें पे करके ही बोतल खरीदनी पड़ती है। अब ये सब कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि एक नया आदेश जारी किया गया है FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने, कि कोई भी होटल वाला ग्राहक को बिना पूछे पानी की बोतल नहीं देगा। पानी कस्टमर को फ्री में देना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और ये बहुत सही फैसला लिया गया है। हाथ धुने साठी हैंड वॉश, साबण आणि टॉवेल वगैरे हे सर्व ठेवणे सुद्धा कंपल्सरी आहे। ज्या हॉटेल मध्ये या सर्व गोष्टी नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। तर हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय, दॅट्स ग्रेट न्यूज यार। क्योंकि कुछ कुछ हॉटेल में हमने भी देखा है यार, हम मांगते नहीं पानी की बॉटल लेकिन वो ला के रख देते। अगर हमें सिंपल पानी सादा पानी चाहिए तो वो बोलते है नहीं मिलेगा आपको, आपको पे ही करना पड़ेगा। तो ये रूल्स और रेगुलेशन अभी शुरू हो चुके हैं, तो सभी होटल्स वाले याद रखिएगा और आप लोग भी याद रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का यह गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यही गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

0: प्यार भी लालच नाल कीता।
1: अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा। वो थोड़ा डर लगा रहता है और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। क्या है ना, दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा और अब समय है इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने का। दिन भर की भागदौड़, काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच शाम का ये समय अपने लिए कुछ पल निकालने का होता है। तो चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो या फिर अपने पसंदीदा गानों का आनंद ले रहे हो, बस मुस्कुराते रहिए और इस शाम को दिल से महसूस कीजिए। याद रखिए, हर शाम एक नई उम्मीद लेकर आती है। अगर आज का दिन आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है, नई शुरुआत है और नए मौके भी। तो अपने मन की सारी थकान को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए, एक कप चाय या कॉफी के साथ आराम कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम लेकर आ रहे हैं बेहतरीन गाने और ढेर सारी अच्छी बातें। मैं यही कहूंगी कि अपनी मुस्कान बनाए रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और इस खूबसूरत शाम को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजे मराठी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। यार इस बीच कभी ना कभी बाहर अगर हल्की बारिश हो रही हो, ठंडी हवा चल रही हो और हाथ में चाय का एक कप हो तो यकीन मानिए शाम अपने आप खास बन जाती है। बारिश का मौसम ही कुछ ऐसा होता है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। ऑफ कोर्स उस तरह से बारिश नहीं हो रही है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी वही मज़ा दे रही है। किसी को बारिश में भीगना पसंद है तो किसी को खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को देखना। कुछ लोग इस मौसम में अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं तो कुछ अपने पसंदीदा गानों के साथ इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हैं। बारिश की ये हल्की हल्की फुहारे जैसे जिंदगी को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती हो और हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रुककर पल को जीना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस वक्त सफ़र में हैं, घर पर है या ऑफिस से लौट रहे हैं, इस मौसम का मज़ा ज़रूर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। और अगर बारिश ने आपको भी रोमांटिक या थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया बना दिया है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बारिश और यादों का रिश्ता तो बरसों से पुराना है। इस प्यारे से मौसम के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो और हाथों में गर्मा गर्म सूप का एक प्याला हो, बस इससे बेहतर एहसास शायद ही कोई हो। दिन भर की थकान के बाद सूप का एक घूंट न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी तरोताज़ा कर देता है। टमाटर सूप, स्वीट कॉर्न सूप, वेज मंचाओ और फिर हॉट एंड सॉर, हर किसी का अपना एक पसंदीदा फ्लेवर होता है। और सच कहे तो सूप सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक एहसास है जो शाम को और भी खास बना देता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, ऐसे में शाम के वक्त एक हेल्दी और गर्म सूप न सिर्फ स्वाद देता है बल्कि सेहत का भी ख्याल रखता है। खासकर जब मौसम बदल रहा हो तो सूप एक बेहतरीन साथी बन जाता है। तो अगर आप घर पर है तो क्यों ना आज शाम अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक प्याला गर्मा गर्म सूप तैयार किया जाए। और अगर आप बाहर है तो रास्ते में अपने पसंदीदा सूप का स्वाद लेना मत भूलिए, ये काफी बेटर आइडिया हो सकता है। फिलहाल आप सुनते रहिए ये खूबसूरत गाने ओनली ऑन एमजी 94.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पूछो जरा पूछो मुझे

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात कर रही हूँ, यानी धरती के तापमान का लगातार बढ़ना। पिछले कुछ वर्षों में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मियाँ पहले से ज़्यादा तेज हो गई है, बारिश का मौसम अनियमित हो गया है और मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग का असर है। दरअसल जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो धरती की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और पेड़ों की लगातार कटाई इसके प्रमुख कारण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी मिलकर इस समस्या को कम करने में योगदान दे सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। याद रखिए, धरती सिर्फ हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी है, इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। आइए आज से ही एक छोटा सा संकल्प ले हम प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे, क्योंकि जब धरती सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हम सभी जिस खूबसूरत प्लैनेट पर रहते हैं वो है हमारी धरती, लेकिन बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार इस्तेमाल हमारी धरती के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि हम अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं। जवाब बहुत आसान है, छोटे छोटे कदमों से। जी हाँ, अगर हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें अपनाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे जहाँ तक हो सके पानी और बिजली की बचत करें, जरूरत न होने पर लाइट, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद रखें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखते हैं। अगर हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल को इस्तेमाल करने की आदत भी पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। इससे प्रदूषण कम होगा और हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी। धरती को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों या संस्थाओं की नहीं बल्कि हम सभी की है, क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तभी प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प ले, धरती को हरा भरा, स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मीड बायपास रोड छत्रपती संभाजीनगर. तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां साफ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और बदलते मौसम ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी आदतें अपना कर भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना और कचरे को सही जगह पर फेंकना। इसके अलावा पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना भी पर्यावरण संरक्षण का एक आसान और प्रभावी तरीका है। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमारी धरती को ठंडा और संतुलित बनाए रखते हैं। अगर हम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तो हमारा वातावरण और भी बेहतर बन सकता है। याद रखिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और अब समय है हमें उसको कुछ वापस लौटाने का। आज से ही एक छोटा सा प्रयास करें, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा और सुरक्षित बनाए रखिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजे मराठी पॉइंट एफएम साथ है तो बात है।

0: देखते ही देखते ये खूबसूरत शाम अब विदा लेने लगी है। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM और मैं हूँ मनीषा आपके साथ, और उम्मीद है कि आज की शाम में हमारे साथ बिताया गया हर पल आपको पसंद आया होगा। कभी दिल को छू लेने वाले गीत, कभी हल्की फुल्की बातें और कभी मुस्कुराने की छोटी छोटी वजह, यही तो है रेडियो का जादू जो हमें आपसे और आपको हमसे जोड़े रखता है। शाम का ये समय अक्सर हमें दिन भर की भागदौड़ से थोड़ा सुकून देता है, तो उम्मीद है कि आज की ये शाम भी आपके लिए कुछ अच्छे पल, कुछ प्यारी यादें और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आई होगी। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, एक नई उम्मीद के साथ आने वाले कल का स्वागत कीजिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आपका इंतजार करती है। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ये सिर्फ आज की शाम के लिए। हम फिर मिलेंगे नई बातों, नए गीतों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को खुलकर जीते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, फिलहाल लेती हूँ आपकी इजाजत। गुड बाय, शुभ रात्रि और आने वाला कल के लिए खुशियों से भरा हो। स्टेडियम टाइम जी नारी पॉइंट फिल्म साथ है तो बात है।
1: पाड़ी प्राणी आरोग्या खास काळजी MGM पेट केयर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केयर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधनपूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। Also direct admission in B Pharmacy second year. Avail attractive scholarships.
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

फिर बिना मांगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज मिली जाती है, वो है पानी की बोतल। जी हाँ, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, और आते ही ना सबसे पहले आपको पानी की बोतल थमा

दी जाती है। भले आपको बोतल से पानी पीना हो या ना पीना हो, या आपको सादा पानी पीना हो, लेकिन वो फोर्सफुली ना हमें बोतल देते हैं। और कुछ कुछ होटल में तो एक ऐसा रूल है भाई, वहाँ पर हमें नॉर्मल फ्री वाला पानी मिलता ही नहीं है, डायरेक्टली हमें पे करके ही बोतल खरीदनी पड़ती है। अब ये सब कुछ बंद होने वाला है क्योंकि एक नया आदेश जारी किया गया है FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने कि कोई भी होटल वाला ग्राहक को बिना पूछे पानी की बोतल नहीं देगा। पानी कस्टमर को फ्री में देना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और ये बहुत सही फैसला लिया गया है। आणि यासोबतच हाथ धुण्यासाठी हैंड वॉश, साबण आणि टॉवेल वगैरे हे सर्व ठेवणे सुद्धा कंपल्सरी आहे। ज्या हॉटेल मध्ये या सर्व गोष्टी नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। तर हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय, दॅट्स ग्रेट न्यूज यार। क्योंकि कुछ हॉटेल में हमने भी देखा है यार, हम मांगते नहीं पानी की बॉटल लेकिन वो ला के रख देते। अगर हमें सिंपल पानी सादा पानी चाहिए तो वो बोलते हैं नहीं मिलेगा आपको, आपको पे ही करना पड़ेगा। तो ये रूल्स और रेगुलेशन अभी शुरू हो चुके हैं, तो सभी होटल्स वाले याद रखिएगा और आप लोग भी याद रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।

या महानगर पालिका ना, तो बारिश को बहुत कोसती होगी, सब चिट्ठा सामने आ जाता है ना इसी वजह से। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और अपने शहर में बरसात अभी शुरू हो चुकी है, अच्छी खासी बरसात हो रही है। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि महानगर पालिका कहते कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन बरसात आने के बाद सब काम सामने आ जाता है और पता चलता है कि यार कुछ काम हुआ ही नहीं है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात देखो, कहते हैं कि हमने गड्ढे अपने शहर के पूरी तरीके से साफ किए, मतलब गड्ढे बुजुर्ना काम के लिए म्हणतात, पण पावसाळ्यात जिकडे तिकडे फक्त पाणी पाणी आणि पाणी साचताना आपल्याला दिसतंय। म्हणजे कसं आपण क्रांती चौक ब्रिज क्रॉस केलं ना, ब्रिज वरून खाली उतरतानाच आपलं स्वागत एका मोठ्या खड्ड्यातून होतं ज्याच्यात सध्या पाणी साचलंय, आणि यामुळे ना ऍक्सिडेंट सुद्धा खूप होत आहेत, टू व्हीलर वगैरे स्लिप होत आहेत। त्यामुळे मी एकच सांगतोय की देखो, महानगरपालिका जब उनका काम करेंगे तब करेंगे, लेकिन आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा और इस बरसात में गाड़ी जरा धीमे चलाइएगा, क्योंकि महानगरपालिका ने ऐसे स्पीड ब्रेकर बिठाए अपने शहर में जिसको हम गड्ढे भी कह सकते हैं, उसमें कब आपकी गाड़ी जाकर फंस जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बी सेफ, बी केयरफुल, एंड महानगर पालिका आपका काम बहुत अच्छा है। ग्रैंड सल्यूट यार आपको, स्टे ट्यून।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: आज घर की सफाई करते वक्त एक पुराना सा वॉलेट मिला, ब्राउन कलर का, कूड़े से थोड़ा घिसा हुआ था। ऐसे वॉलेट जो आज के जमाने में शायद कोई यूज भी ना करता हो। मैंने उसे ओपन किया, अंदर कुछ पुराने बिल्स थे, कुछ रिसीप्ट और एक छोटी सी फोटो। फोटो मेरी थी जब मैं शायद 5 या 6 साल का था। मुझे हैरानी हुई, वॉलेट में पैसे कम थे, कार्ड्स पुराने थे, लेकिन मेरी फोटो अब भी संभाल कर क्यों रखी थी। तब याद आया, पापा जब भी घर से निकलते थे इसी वॉलेट को पॉकेट में रखते थे, ऑफिस, बाजार, सफर, हर जगह। मतलब सालों तक हर दिन मैं उनके साथ था, एक छोटी सी फोटो के रूप में। उस वॉलेट में एक और चीज थी, एक पुरानी रिसीप्ट। उस पर लिखी डेट वही थी जब मेरी स्कूल की पहली फीस भरी गई थी। मुझे अचानक समझ आया, हम बचपन में सोचते थे कि पापा बस ऑफिस जाते हैं और घर आ जाते हैं, लेकिन उनके वॉलेट में छुपे कागजों ने बताया उनकी पूरी जिंदगी हमारे सपनों की ईएमआई भरते हुए गुजरी है। अपनी ख्वाहिशें साइड में रखकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हुए, और शायद इसीलिए पापा ज्यादा बोलते नहीं, वो अपना प्यार लफ्जों में नहीं जिम्मेदारियों में लिखते हैं। मैंने वॉलेट बंद किया और बहुत दिनों बाद पापा को फोन किया। बस इतना कहा, पापा आप कैसे हो? 2 सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। और पता नहीं क्यों उस दिन उनकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी सी लगी, शायद उम्र की वजह से, या शायद इसीलिए क्योंकि हम बड़े होते होते उनकी कुर्बानियां देखना भूल जाते हैं। कभी वक्त मिले तो पापा का पुराना वॉलेट जरूर देखना, हो सकता है उसमें पैसे कम मिले लेकिन मोहब्बत और कुर्बानी का हिसाब बहुत ज्यादा मिलेगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
2: प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: बूंद जिंदगी के, किसने कहा था याद है? अमिताभ बच्चन जी का ये एक एडवर्टाइजमेंट था पोलियो डोज के लिए। हमने बचपन से लेकर आज तक तो देखा ही होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। तो दो बूंद जिंदगी के बहुत जरूरी है और ये आप ले सकते हो संडे के दिन। जो 0 से 5th ईयर तक के बच्चे उन्हें हम पोलियो डोज दे सकते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। अपने साथ है डॉक्टर प्राजक्ता खर्जे मैम, बाल रोग तज्ञ MGM हॉस्पिटल। नमस्कार मैम, तुमचं स्वागत आहे। तर मॅम, पल्स पोलिओ मोहीम सुरू आहे आपल्या पूर्ण भारतात, तर याचं महत्व काय त्याबद्दल आम्हाला सांगा।
1: पल्स पोलिओ ही भारत सरकारकडून राबवली जाणारी पोलिओ विरुद्ध एक रोगप्रतिकारक मोहीम आहे। या मोहिमेअंतर्गत 0 ते 5 वयोगटापर्यंतच्या सर्व मुलांना आपण पोलिओचे डोस देतो। पोलिओचा डोस दिल्यानंतर मुलांच्या शरीरामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते, रोगाचा प्रसार थांबतो, रोगाची साखळी तुटते, त्यामुळे सर्वाधिक बालकांचे संरक्षण होते। आपण पाहतो

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
5: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।